पाए कहे जब ते तुमरे तब ते को आख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सब है वो वेद कहे हम एक न जाने ओ सरियस बहान कृपा तुमरी कार मैं ना कहे ओ सब तोहे बखाने ओ दोहरा।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज सेती मन बजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्दो तां गावो हरि के राम मन जिने वसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो रनाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्या मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो रनाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा है करता तेरा सब किश है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नहीं करते राय साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन वसिया जिन इच्छा सब बजाइया सदा कुर्बान किया गुरु बेटा जिस दियां बड़ियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द कर सभागे कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस किते काल कंटक मारिया

मन है गहीरोपेख प्रभु को जो चाहो सोई सोई पावों आशा मनसा पूरों जप प्रभु का सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जात सरी महला पंजवा कोई जान हर स्यों देव जोर चरण गहों बको शुभ रसना दीज है प्राण अकोर कोई जान हर स्यों देव जोर चरण गहों बको शुभ रसना दीज है प्राण अकोर मन तन निर्मल करत के आरो हर सिंच सुधा संजोर या रस मह मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर आयो शरण दीन दुख पंजन चितवो तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंदन शोर आयो शरण दीन दुख

0: दरबार सच्चा आप सच्चा दरबार
1: सच्चा आप सच्चा दरबार सच्चा आप सच्चा दरबार
0: मैं तुहानू पढ़न दी खेचल क्यों दे रहा मैं भी जदों तुसी पाठ करो तुहानू सब कुछ याद हो जाए ते इउं समझाया गया मेरा असी तोता रटनी नहीं कर फिर पातशाह कहंदे ने उसके दरबार विच किन्हां नूं सत्कार मिलेगा जिथे सोहन पंच परवान जिथे उसके दरबार विच जिथे दा मतलब है उसके दरबार विच सोहन सवाए मान गुरु साहब ते सानू रोज कहंदे सही सुंदर सोहने साध संग जिन बहने अजिया ने नहीं असि टीवी अगे बैठना है अजिया ने उसे सोने लगना है नहीं नहीं गुरु साहब कहने ओ हन सुंदर ओ हन सोने जेड़े गुरु की संगत विच आके बैठते क्योंकि उसे सोहनी प्रेरणा मिलेगी सोहने विचार मिलेंगे सोहने कर्म करांगे लोग आखनगे वाकई भाई ये बंदे सोहने तो महाराज कहने सवाहे गुरु की दरगाह विच जिथे सोहन पंच परवान वो परवान कबूल पैणगे हुण पंचां दी गल तुसीं पहलां चंगी तरह समझ चुके हो पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावै दरगामान फिर की हुंदा है नदरी करम पवै निशान ये जिहड़ा निशान शब्द है ना इहनूं चंगी तरह समझ ले देखो जिवें कागज होवे ते उहदे उत्ते मोहर ना लगी होवे उहदी वैल्यू है कोई आज दसा का नोट हो गए सौ का नोट जिन्हें कागज कट कट के थबिया बना दो दसियां बना दो कोई है कीमत मोर की कीमत कहते फिर उन्होंने जेड़े अपने धर्म न कमाते ने जेड़े उस अकाल पुरख की दरगाह विच प्रवान होंगे ने उन्होंने उत्ते नदरी करम पवै उन्होंने फिर निशान पैदा मोर लगे उन्होंने वाहगुरु जी रहमत की नजरे अनायत होंगे ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ

चेत बर में कारक कड़िया रूप रंग के वेश केतियां कर्म भूमि मेर केते

গুরু রূপ খালসারি আত্মবাদকে বাহেগুরু জি কা খালসা বাহেগুরু জি কি ফতে जिथे आम दुनिया दिया कौम का जीवन खत्म हो जाता है उस सिंह का जीवन शुरू हो जाता है। मीर मनू की जेल दिया चक्या चटनिया के दंदे लाहौर की तत्ती तवेली दिल्ली का चांदनी चौक उपर की जेल सरहद की कंध खालस इतिहास का गवाह हैं। इन सिंह समय से पहले सरकार ने खत्म करना चाहे पर गुरु का खालसा खत्म नहीं होता।

दिल्ली के बादशाह औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि मेरे राज सेना कीर्तन नहीं हो सकता, कोई घोड़े की सवारी नहीं कर सकता। इधर सतगुरु धन गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह ने अपने सिंह को हुक्म किया, सिंह अज तो मेरा खालसा उस घोड़े की सवारी करूंगा जरा औरंगजेब के प्यो ने भी नहीं देखा। औरंगजेब कहना मैं ढोलकियां बाजे बंद कर देने पर मेरा हुक्म है रणजीत नगारा मरो। सिंह ने सरगू का पाया हुक्म मरिया रणजीत नगारा चेकर पाते हुए खालसे ला के चौसे ने उसे चौथा चढ़ के घोड़े ने उसे कहे लोग दिया पहाड़िया शिकार खेलने वास्ते यू जाने रही।

कोई महाराज सत्य पाठशाह का प्रभाव खेलू खेलू हो गया, गुरु का घर सोया गंदू के माता जी को गुरु के दादा में सर चंद्रे मेरे के कम मारती तो धीरे करके मता आखिर सारी मेरी रात करूंगा और पता नहीं लगता गुरु सर के कम गए चले माता जी के आज भाग जी भी गए कर दो जिन्हें मामा पोता के नाम रखते हैं वे सर दादे कितर गए कितने सिंह हो गए हो गया कोई पता नहीं लग गया गुरु को कैसे तक समय होगा आगे माता जी होना आगे कन्या होगी करना आगे माता जी मेरा पेड़ तो ले रही है खेड़ी जिन माता से खेड़ी कन्या मिलने को रोकर उड़ते यार आपस राजी सारे नाम करो स्वास्थ्य किलोमीटर की दूरी से नगर तैयार माता जी मेरी मां का हल कहीं नहीं है कोई खतरा के संबंध के जाएंगे गुरु से वो मिल लवेंगे आओ तो हरी सेवा करेंगे कर ले गया तनाव आज मान कहकर गुरु साहब के लाल भी तुम कभी कर पाए जाए गुरु साहब की माता है जन्मों की मां के लिए भाग जाके गुरु मेरा के चरण पर तनाव पड़ी गुरु को रात बतीत हो रही है आपकी मान पहले दुर्ग है मैं जहर लेके आया दुर्ग जहर मिला के नाम बुला देंगे गुरु तेग बहादुर साहब शहीद हो गए ने गुरु कर्मियों वाले नंदा ने पुलिस छड़ के आ गए थे पढ़ने पौन के नंदपुर को छोड़ दी गए होने ना बोले पहुंचाए ना तो पीछा कर दिए ने वाली बात कोई है नहीं खत्म कर दिए सोने दोला ने उस साल के आप बड़े अमीर बन जाएंगे तेरी मां ने आखो तेरा काटना है घर से फसल कराना है उसका भी आदर मान करेगा तो गुरु साहब के नाल ने कोई ऐसा जो समा आया जिसे आयुष्य करो जनारी करने वाले गोबर हथियार संबंधी खातर माया संबंधी खातर और जिन्होंने गरीब बच्चियों की शादी करते थे अमीरों के दुश्मन रहते खालकू सिंह निजारू सिंह जान पड़ी के रख के रात किले दिन किले कई नौकरी करने वाले संतान ने माया के नाल मिलने जाके और गुरु प्यारे गुरु दुनारियों के हित वाले ठीक वाले और साझेदारियों

पाकिस्तान का तीनों बड़ों कर्म में साझा हमें एक साझा कर दिया तीन दुनिया पर हमारी आगे तो अभी दादे दादे की पार्टी में भाग ना आए दिल करे तो सुंदर जी की कहने लगेगी बड़े लाल बड़े गुलाबे देते जाएंगे लाल चौना भी गुलाबे को धरना।

प्राण माता गुजर करती सारी रात इनको दर्शन कराई श्री गांधी ग्यारह को सबसे नायरा जानवा की तैयारी लगी सिपाही आए दरवाजा खोले माता इन्होंने सूबे से बुलाया कि अपने को बढ़िया ही तैयार कर लो तो भाई ने आपको सौ बनाया दरवाजे सजाए इंडिया को तो मैं इंडिया के दरवाजे सजाए नहीं करा भैया के दरवाजे सजाए नहीं करा बुजुर्गों के मुकामों के बच्चे बच्चियों के सच्ची मुच्ची धनसा बाबा जी सिंह जी धनसा बाबा जगधार सिंह जी धनसा बाबा जोरावर सिंह जी धनसा बाबा फतेह सिंह जी याद आते भी गए थे सिपाही आए सब जाने लग गए आगे जवान सुचा नंद चूठा नाम लाग लगी बैठा सुबह ना सलाम करो कलाम जब अमृत की दान दिखी जाती ना पानी प्यारे पानी मुख में पानी नेत्रा च पानी शरीफ पंद्रह मरी कहावे के बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सलाम करिए

दादी माँ को पहले से 12 दस दिन आया पेशी करी तेरे हाल को कुछ भगवे लाए जिनके और मेरे को माँ ने आधा ना मनाया पर दीवार सच्चा ना चूपा ऐसा मैं मुझा नहीं चाहिए सोलह में तू ए दादी माँ को चले गए 1300 का दिन आ गया दिन साल में छोटा है उम्र भी तो अगर छोटिया ने तो दादी मां नाले सुनी है

का नियम विस्तृत के बाद अपने को प्रेम बोल रही है तो दुनिया पार के मजे में भी है और ठंडे बोली का गौर के भी आना और जिस हिंदो के खाते की गोल में जा रहे हैं और मेरी खेती आदि जी खेती आदि तो मिले लालों की चंदों में है जी तो रुपये समझना ना इंडिया खड़े कर देते कृपया गोदे के काम आई बाबा जोड़ों में सिंह आशीर्वाद एक तोड़ने की काम बिजली की कमी सीखी रहा निंदा के बच्चे टूटी अटली नौनी सारे गोदियां अपनियां भर दे जाकर गांधी मन का

आज ये हुआ जीवन आज हम पुस्तली बैठे हुए को आगे पोकर मार के साधु महाराज ने अपने पोकर बनाया सेवा बड़ी की मारे बड़ी मांगे मारी सरकार की मारे नहीं सकिया फिर दल ने खड़े मारे नंबर छटिया तो हरे चरणा की

0: केवोदी रंगीली टर्टी देवसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.
4: Maru Mahalla Panyava Prav Samarath Sarv Sukh Dana Simro Naam Ho Ho Mehrwana Har Data Ji Jant Te Khari Jan Banchai Ja Changana Mango Jan Tur Parm Gat Paavo जन्म जन्म की मैल मटावो, दीर्घ रोग मिटह हर औखद, हर निर्मल रापै।

कर सो कृत नाही संगना रसना गुण गावे हर तेरे मिट है कमाते अब गुण मेरे सिमर सिमर स्वामी मन जीवे पांच दूत तज तंगना चरण कमल जप बोहित चरिये संत संग मिल सागर तरिये अर्चा बंदन हर समत नवासी बहुड़ जोन ना नंगना दास दासन को कर ले हो गोपाला कृपा निदान दीन दयाला सखा सहाय पूर्ण परमेश्वर मिल कदे न होवी भंगना मन तन अर्प धरी हर आगै जन्म जन्म का सोया जागै जिसका सा सोई प्रतपालक हाथ त्यागी हम मैं हंतना जल पल पूर्ण अंतर जामी कट कट रव्या अशल स्वामी परम पीत खोई गुरपूर एक रव्या सरबंगना जत कत भेखो प्रभ सुख सागर हर तोट भंडार नाही रतनागर अगह अगाह किस मित नहीं पाई है सो बूझै जिस किरपंगना साती शीतल मन तन ठंडा जन्म मरण की मिटवी दंजा कर गह काड लिए प्रभ अपने हमें उतार दृष्ट टंगना एको एक रव्या सब ठाई तिस बिन दूजा कोई नाई आद मादे अंत प्रभ रव्या कृष्ण बुझी परमंगना गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुर करता गुर सद बख्शंद गुर जप जाप जपत फल पाया ज्ञान दीपक संत संगना जो पेखा सो सब किस स्वामी जो सुनना सो प्रभ की वाणी जो कीनो सो तुम्हें करायो शरण सहाई संत है तना जाचक जाच है तुम्हें अराध पतत पावन पूर्ण प्रभ साधे एको दान सर्व सुख गुण निद आन मंगन निह किंचना काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोहे बनी हर बाणी मन नाम मजीठ रंगना सोलह कला संपूर्ण फलिया अनत कला हुए ठाकुर चढ़िया आनंद बनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले महला पंजवां।

कर्ण करामन सब तू है, तू है नाही किस असाड़ा। तुम है पठाए ता जग मह आई, जो तुझ पाणा से कर्म कमाई। तुझ ते बाहर किछु ना हुआ, ता भी नाही किस काड़ा। ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए, इहा हर जस तेरा भणिए। आपे लेख अलेख है आपे, तुम सियो नाही किस झाड़ा। तू पिता सब बारक थारे, ज्यो खलावे है त्यो खेलन हारे। उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना, चले नाही को वे पाड़ा। एक बसाए रखे ग्रह अंतर, एक पठाए देश दसंतर। एक ही को कास एक ही को राजा, इन मैं कही है क्या कूड़ा। कमन सो मुक्ति कमन सो नरका, कमन से सारी कमन सो भगता। कमन सो दाना कमन सो होछा, कमन सो सुरता कमन जड़ा। हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका, हुक्म से सारी हुक्मे भगता। हुक्मे होछा हुक्मे दाना, दूजा नाही अवर तड़ा। सागर कीना आत तुम पारा, एक खड़ेर पातल कर मनमुख गावारा। एक ना पार लंगा वह आपे, सतगुर जिनका सच बेड़ा। कौतक काल एहो हुक्म पठाया, जीव जंत उपाय समाया। विखै विगसै सब रंग माणी, रचन कीना एक अखाड़ा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, वड दा तार वड्डी जिस जाई। अगम अगोचर बे अंत अतोला, है नाही किस आहाड़ा। कीमत कोई ना जाने दूजा, आपे आप निरंजन पूजा। आप सो ज्ञानी आप त्यानी, आप सतवंता अत गाड़ा। केतड़िया दिन गुप्त कहाया, केतड़िया दिन सुन समाया। केतड़िया दिन धुंधू कारा, आपे करता प्रगटड़ा। आपे शक्ति सबल कहाया, आपे सूरा अमर चलाया। आपे शिव वरताई नियंतर, आपे शीतल ठार गड़ा। जिसह नवाजे गुरमुख साजे, नाम वसै तिस अनहद वाजे। तिस ही सुख तिस ही ठकराई, तिसह न आवै जम नेड़ा। कीमत कागद कही ना जाई, कहो नानक बे अंत गुसाई। आद मत अंत प्रभ सोई, हाथ तिसै कै निबेड़ा। तिसै शरीक नाही रे कोई, किस ही बुटै जवाब ना होई। नानक का प्रभ आपे आपे, कर कर वेखै चोज खड़ा। मारू महला पंजवां, अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी। मद सूदर दामोदर स्वामी, ऋषि केश गोवर्धन तारी। मुरली मनोहर हर रंगा, मोहन माधव कृष्ण मरारे। जगदीश्वर हर जियो असुर संघारे, जग जीवन अबनासी ठाकुर। घट घट वासी है संगा, धरनी पर ईस नरसिंह नारायण। दाड़ा अगरे प्रथम तरायण, बावन रूप किया तुद करते। सब ही सेती है चंगा, श्री राम चंद जिस रूप नारे खिया। बनवाली चक्र पान दर्श अनूपिया, सहस नेत्र मूर्त है सहसा। एक दाता सब है मंगा, भगत वचल अनाथ है नाथे। गोपी नाथ सगल है साथी, वासुदेव नरंजन दाती। वर्ण ना साकों गुण अंगा, मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण। द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण, कमला कंत करह कंतूहल। आनंद बनोदी निसंगा, मोग दर्शन आजूनी संभव। अकाल मूरत जिस कदे नाही खो। अवनासी अवगत अगोचर, सब किस तुझ ही है लगा। श्री रंग बैकुंठ के वासी, मछ कछ कूरम आग्या अवतरासी। केसव चलत करह निराले, कीता लोड़ है सो होएगा।
निराहारी निरवैर समाया, धार खेल चतर पुज कहाया, सावल सुंदर रूप बनावे, बेण सुनत सब मोह हैगा, बनमाला बेभूखन कमल नैन, सुंदर कुंडल मुकट बैन, शंख चक्र गदा है धारी, महासारथी सतसंगा, पीत पितंबर त्रिपवन धनी, जगन्नाथ गोपाल मुख भणी, सारंग धर भगवान दी ठुला, मैं गणत न आवै सरबंगा, निह कंटक निह केवल कहिए, तनंजय जल थल है महिए, मृत लोक पयाल समीपत, अस्थर थान जिस है अपगा, पतत पावन दुख पै पंजन, हंकार निवारण है पव खंडन, भक्ति तोखत दीन कृपाला, गुणे न कित ही है पिगा, निरंकार अचल अडोलो, ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो, सो मिले जिसे आप मलाई, आपो हो कोहे ना पावेगा, आपे गोपी आपे काना, आपे गहू चरावे बाना, आप उपावे है आप खपावे है, तुझ लेप नहीं एक तिल रंगा, एक जी ही गुण कमन बखाने, सहस थनी सेठ अंत न जाने, नवतन नाम जपै दिन राती, एक गुण नाही प्रभ कह संगा, ऊट गही जगत पित सरनाया, तै भयानक जमदूत दुतर है माया, हो कृपाल इच्छा कर राखो, साध संतन कह संग संगा, दृष्ट मान है सगल मथेना, एक मांगो दान गोविंद संतरेना, मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाती, तिन साधु चरण लै हृदय पराती, सगल नाम निधान तिन पाया, अनहद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा, सत नाम तेरा परा पूर्बला, कहो नानक भगत पए सरनाई, देहो दर्श मन रंग लगा, तेरी गत मित तू है जान है, तू आपे कथ है तै आप बखान है, नानक दास दासन को करियो, हर भावे है दासा राख संगा, मारू महला पंजवा, अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, हुए पै खाक फकीर मुसाफर, एहो दरवेश कबूल दरा, सच निवाज यकीन मसल्ला, मनसा मार निवार हुआसा, देह मसीत मन मौलाना, कलम खदाई पाक खरा, सरासरयत लेख मावहु, तरीकत तर्क खोज टलावहु, मारफत मन मारहु अबदाला, मिलहु हकीकत जित फिर न मरा, करान कतेब दिल माहे कमाही, दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदकले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पै खाका, पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लाह आला हुजरा, सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी, सो मुल्ला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफत धरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले मैं मौला, तस्बी याद करहु दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल मैं जानू सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फानाया, एक मकाम खुदाए दरा, अवल सिफत दूजी साबूरी, तीजै हलेमी चौथे खैरी, पंजवै पंजे इकत मकामै, एह पांज वक्त तेरे अपर परा, सगली जान करो मौदीफा, बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा, खुदाए एक भुज देव हो बांगा, बुरगु बर खुरदार खरा, हक हलाल बखोर हो खाना, दिल दरियाओ तो वो मैं लाना, पीर पछाण है पिस्ती सोई,
अजराइल ना दोज ठरा काया किरदार औरत यकीना रंग तमाशे मान हकीना नपाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते धोवे दुनिया रंग ना आवे नेड़े ज्यो कुसम पाट च्यो पाक हरा जाको मेहर मेहर मेहरवाना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई सेख मसाय कहाजी सो बंदा जिस नजर नरा कुदरत कादर करन करीमा सिफत मोहब्बत अथाह रहीमा हक हुकम सच खुदाया बुझ नानक बंद खलास तरा मारू महला पंजवा पार ब्रह्म सब ऊच बराजी आपे थापे थापे साजी प्रभ की शरण गहत सुख पाई है किस भौ न व्यापै बालका गर्भ अगन मह जिन्ह उभारिया रखत किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओह सगल घटा का मालका चरण कमल शरण आई आया साध संग है हर जस गाया जन्म मरण सब दुख नवारी जप हर हर भौ नहीं काल का समर्थ अकथ अगोचर देवा जी जंत सब तां की सेवा अंडज जेरज सेतज उत्पुज बहु प्रकारी पालका तिसह प्राप्त हुए निधाना राम नाम रस अंतर माना कर गहली ने अंध कूप ते बिरले के सालका आदि अंत मद प्रभ सोई आपे करता करे सो होई ब्रह्म को मिटिया साध संग ते दालत ना कोई काल का उत्तम बाणी गाओ गोपाला साध संगत की मंगोहर वाला बासन मेट न बासन होई है कल मल सगले जाल का संता की एह रीत नराली पार ब्रह्म कर देख नाली सास सास आराधन हर हर क्यों सिमरत की जय आलका जह देखा तह अंतर जामी निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी सिमर सिमर जीव है तेरे दासा बन जाले पूर्ण थालका तत्ती वाओ ना ताको लागे सिमरत नाम अन दिन जागे आनंद बनोद करे हर सिमरन इस माया संग ना तालका रोग सोग दुख तिस नाही साध संग हर कीर्तन गाही अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम सुन बेनंती खालका नाम रतन तेरा है प्यारी रंग रते तेरा दास अपारी तेरा रंग रते तुद जेहे बिरले के पालका तिनकी धूड़ मांगे मन मेरा जिन विसरह नाही काहू बेरा तिनकै संग परम पद पाई सदा संगी हर नाल का साजन मीत प्यारा सोई एक दरड़ाए दुर्मत खोई काम क्रोध अहंकार जाई तिस जन को उपदेश निर्माल का तुद विण नाही कोई मेरा गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा हौ बलिहारी सतगुर पूरे जिन खंडिया परम अनाल का सास सास प्रभ बिसरै नाही आठ पहर हर हर को त्याई

पत गुर प्रसाद, चरण कमल हृदय नित तारी, गुर पूरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो विसारी, जियो पिंड दे साज सुवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साज संग भाजे चुत स्वामी, दरगाह शोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद, सर्व कल्याण ज

जे गुर तीरख दे तित दर जाए उतारिया गुर दिसै सावधान नानक नदरी पाई है दरगाह चले मान पौड़ी निह कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चा तख्त बैठा न्याओ कर सत संगत मेल मलाई सच्चा उपदेश हर जापना हर सिहों बने आई ऐसे सुखदाता मन वसै अंत हुए सखाई हर सिहों प्रीत उपजी गुर सोजी पाई श्लोक महला पहला।

ना चोही अड़े सच चो नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्शियों हर नाम समाने आपे भगती लायोन गुर शब्द निशाने सनमुख सदा सोहने सच्चे दर जाने ऐसे उठे मुक्त है जिन राम पछाने तन तन से जन जिन हर सेविया तिन हौ कुर्बानी सलोक महला पहला महल कुचजी मड़वड़ी काली मनहु कसुद जे गुण होवन ता पिर रवै नानक अवगुण मुंद महला पहला साच सील सच संजमी सा पूरी परवार नानक अहनस सदा भली फिर कै हेत प्यार पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निधान पाया कृपा करके अपनी गुर शब्द मलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर रस जिन्नी चाखिया हन रस खाक रहाया हर रस पी सदा तृप्त भये फिर तृष्णा भूख गवाया सलोक महला तीजा फिर खुशिये तन रावीए तन और नाम शिंगार नानक तन आगे खड़ी शोभा बंती नार महला पहला ससरह पेई है कंत की कंत अगम अथाह नानक तन सुहागणी जो भाव है वे परवाह पौड़ी तख्त राजा शोभ है जे तख्त लायक होई जिन्नी सच पछाणिया सच राजे से एह भूपत राजे ना आखी है दूजे पाए दुख होई कीता क्या सलाही है जिस जांदे बिलम ना होई निश्चल सच्चा एक है गुरमुख बूझे सो निश्चल होई सलोक महला तीजा सबना का फिर एक है फिर बिन खाली नाही नानक से सुहागणी जे सतगुर माहे समाहे महला तीजा मन के अधिक तरंग क्यों दर साहिब छुटी है जे राचै सच रंग गूढ़ रंग अपार कै नानक गुर प्रसादी छुटी है जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है क्यों कीमत कीजै आपे सिख सब साजियन आपे वरतीजै गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत कीजै गुर शब्दी कमल बेगासिया एव हर रस पीजै आवन जाना ठाकिया सुख सहज सवीजै सलोक महला पहला ना मैला ना धुंधला ना भगवान ना कच नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच महला तीजा सहज बनस्पत फुल फल भवर वसै पै खंड नानक तरवर एक है एको फुल पे रंग पौड़ी जो जन लूजे मने स्यों ते सूरे प्रधाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप पुछाना ज्ञानिया का एहो महत है मन माहे समाना हर जियो का महल पाया सच लाए त्याना जिन गुर प्रसादी मन जीतया जगत नह जिताना सलोक महला तीजा जोगी होवा जग पवा कर कर भीख्या लेओ दरगाह लेखा मंगी है किस किस उत्तर देओ भिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल भेखी हाथ ना लदिया सब बद्दी जमकाल नान

जोग भोग नहीं भेद जगत भगत जाहे असन बसन गुर सिखन लिभाए हैं। निगम सिखादिक कथिक नेत नेत कर पूर्ण ब्रह्म गुरु ज्ञान।

नाम पतित पावन सबके नाम पूरब कर्म लिखै पूरब कर्म लिखै पतित पावन।

0: मर्द चिंता करता है, मेरे को जॉब नहीं, मेरे को घर नहीं, और कई तरह की चिंतावान लगिया ने। पर साहब जी कहते ऐ चिंता छड़, क्योंकि संसार विच आने तो पहला पहला देवता रजत संभा, पिछो देवता जंत संभा। गुरु का जे चिंता करनी है तो ये चिंता कर कि अज मैं गुरु घर नहीं गया, ये चिंता कर अज मेरा नितनेम नहीं होया, ये चिंता कर अज मैं सेवा नहीं कीती। जे चिंता करनी है तो ये कर अज मेरा सिमरन नहीं होया। सतनाम, बाकी चिंता गुरु से छोड़ दो।
1: नानक चिंता मत करो, चिंता किसी है

माई मेरे मन की प्यास, एक खेन रह ना सकों बिन प्रीतम, दर्शन देखन का उतारी मन आस।

रजो नाओ दोई कुदरत साजी है कारासन दिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे बसाओ तू जानो सब सह दिल से जिंद गवाओ सारे आस

जियो पिन सब दिसदा देखा जे अगवाई है जे लोड़े चंगा अपना कर पुनो निसदाई है जे जरवाना पर हरे जरवेश करेंदी आई है को रहे न परिये पाई है को रहे न परिये पाई है।

पौड़ी बिन सतगुरु के न पायो, बिन सतगुरु के न पाया। सतगुरु क्या रखे और कर बड़े अक सुनाया। सतगुरु मिले सदा मुक्त है, जिनको मोह चुकाया। उत्ते में हो विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

0: पौड़ी सच्चा साहिब तू जी सचो सच वरताया जिस तू दक्ष मिले सच तनी सच कुमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जानी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
1: हर अमृत पर।

पौड़ी तुर करम जिना को तुद पाया तदनी खसम से आया इना जनता के वशिश नाही तुद वेखी जग तू पाया इक नानू तू मेला काबो तुद खुआया गुर कृपा ते जाने जिथे तुद आ बुझाया सहजे सच माया सहजे ही सच।

पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे दा साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म बनाए सी हुक्म मन्या होवे परमार दा किसने का महल पाए सी मन में पावे सो करे मन दिया सो फल पाए सी कांदर गै पैंदा जाए सी कांदर गै पैंदा जाए सी।

पौड़ी पुरे पलाने पौड़े गारंगी हरुस मारिया कोठे मंडल मारिया लाए बैठे कर पसारिया चीज कर मन भाव दे हर पूजन नाही हारिया कर परमाश माया व्यक्त हत मर विसारिया जरे आई जो बनहारिया जरे आई जो बनहारिया।

पौड़ी सबू अपनी अपना जितना ही शोषण कटी है जितना आपो अपना आपे हिले पसंद दी है जा रहना नहीं है जगता पाठ कर भंडी है बंदा किसे ना।

नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितै न पाईऐ धर्म नानक किस मिलै जिस लिखिया थोर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास किसका राम सत राम दास आत्म राम किस नदरी आया दास संतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे इस दास को सब सोजी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सौ कहावे तैसा हर्ष तैसा उस सोग सदा आनंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओह पुरख कई है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाव जिजित कर राखे तैसा तिन नाव आपे कर्म करावन योग प्रभ फावे सोई फुन होग पसरियो आप वो अनत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगाश पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक तय निहाल श्लोक उस्तत कहे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रवृति बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट तय तीर्थवासी कई कोट मन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट ततीश्वर होते कई कोट आत्म ध्यान तारे हैं कई कोट तब काब विचार हैं कई कोट नवतन नाम ते आवे हैं नानक करते का अंत ना पाम है कई कोट तय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अभिज्ञ आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ को हिरें कई कोट पर दुख न करें कई कोट माया श्रम माह कई कोट प्रदेश प्रमाह जिद्दित लावहो तित्तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस होगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पाथर बिरख निप जाय कई कोट पवन पानी बैसंत्र कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशिर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल सामग्री अपने सूत तारे नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमृत और शास्त्र कई कोट किए रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जह किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत सूक्र मृगाच सब ते नेरै सब हू ते दूर नानक आप अलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बहु जोनी फिरे कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काल थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जै जै पाना तै तै राखे नानक सब किस प्रभ कह हाथे कई कोट तय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म मह पार ब्रह्म लहनते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिनको मिलियो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सुख प्रसन्न नानक ते जन सदा तन तन कई कोट खानी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जुगत तीनों विस्तार कई बार पसरे पासार सदा सदा एक एकंकार कई कोट किन्ने बहु पांत प्रभ ते होए प्रभ माहि समात ताका अंत ना जाने कोई अपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत के बेटे सदा निहारें एको नेत्रे
कई कोट नाम रस पीवें, अमर भय सद सद ही जीवें, कई कोट नाम गुण गाम है, आत्म रस सुख सहज समाम है, अपने जन कहो सास सास तुम्हारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे।

0: श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय नानक तिस बलिहारण है जल थल मैयल सोय अष्टपदी करण करावन करण जोग जो तिस पावे सोई होग खिन मह थाप उथापन हारा अंत नहीं किसी पारा वारा हुक्मे तार अधर रहावे हुक्मे उपजय हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब में रहा समाई प्रभ पावे मानुक गत पावे प्रभ पावे ता पाथर त्रावे प्रभ पावे बिन सास ते राखे प्रभ पावे ता हर गुण पाखे प्रभ पावे ता पतित उधारे आप करे आपन विचारे दुहा सिरिया का आप स्वामी खेल दिगस है अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मानुखते क्या हुए आवे जो दिस पावे सोई करावे इसके हाथ हुए ता सब किस ले जो दिस पावे सोई करे अन जानत दिखिया मैं रचे जे जानत अपन आप बचे परमे पूला दै जिस तावे निमख माह चार कुंट फिर आवे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले किन मैं नीच पीत कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कछु न आवे किस तत्काल दै दिस प्रगटावे जाको अपनी करे बख्शीश ताका लेखा न गणे जगदीश यो पिंड सब किसकी रास कट कर पूरन ब्रह्म प्रगास अपनी बनत आप बनाई नानक जीवे देश बढ़ाई इसका बल ना ही इसे हाथ करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावे सोई फुन थियो कब हूँ ऊंच नीच में बसे कब हूँ सोग हरख रंग हसे कब हूँ निंद चिंद व्यवहार कब हूँ ऊब आकाश तयाल कब हूँ बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबहू नृत्य करे वो पांत कबहू सोए रहे दिन रात कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की होत रवाल कबहू ओए बह बड़ राजा कबहू पिखारी नीत का साजा कबहू अब कीर्त में आवे कबहू पला पला कहावे ज्यो प्रभ राखे तिव ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू मोन तारी लावे ध्यान कबहू तट तीर्थ इश्नान कबहू शिव साधिक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनेक जोन परमय परमिया नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे ज्यों प्रभ पावे तिवें नचावे जो तिस पावे सोई होए नानक दूजा अवर ना कोए कबहू साध संगत एहो पावे उस स्थान ते बहुर न आवे अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा बसें पार ब्रह्म के संग ज्यों जल मह जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान। श्लोक सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने मैं जोबन वंत सो होवत विच्चा का जंत आपस कहो कर्मवंत कहावे जन्म मरे बहु जोन प्रमावे तन पूम का जो करे गुमान सो मूरख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इया मुक्त आगे सुख पावे धनवंता हुए कर गर्भावे तृण समान कछ संग न जावे बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं होए जाए पसमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म राय किस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटाए अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हाँ तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगह को कैसे गवै, आपस कहो जो भला कहावै, किसे भलाई निकट ना आवै, सर्व की रेन जा का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझ ते कछ होए, तब इस कहो सुख नाही कोय, जब ए जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी नीत, तब लग निचल नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माय, तब लग धर्म राय देश जाय, तब कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हाँ छूटे, सहस कटे लख कौ उड़तावे, तृप न आवे, माया पाछे पावे, अनिक भोग विख्या के करे, न तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं कौ राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए, करन करावन आपके आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करना है हार, इसके हाथ कहां विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपके आप आप प्रभ सोए, जो बिचकीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबहू कै संग, बुझ है देख है करै विवेक, अपह एक अपह अनेक, मरै न बिनस है आवै न जाय, नानक सदी रहया समाय, आप उपदेश है समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप तीनों आपन विस्तार, सब कछ उसका ओहो करना हार, उसते तिन कहो किछ होए, थान थनंतर एक कै सोए, अपने चरित आप करना हार, कौतुक करै रंग आपार, मन में आप मन अपने माह, नानक कीमत कह न जाय, सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद, किने वख्यानी सच सच सच सब कीना, कोट मध्य किने बिरले चीना, पला पला पला तेरा रूप, अति सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कट कट सुनी श्रवण बख्यानी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत शरण जो जन परै, सोजन उदरन हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार, अष्टपदी। संत कै दुखन आर्जा घटै, संत कै दुखन जम ते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाय, संत कै दुखन नरक में पाय, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन सो बाते हीन, संत के हते कहो रखै न कोय, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होय, संत कृपाल कृपा जी करै, नानक संत संग निंदक भी करै, संत कै दुखन बेमुख पवै, संतन कै दुखन कागज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प जौन पाय, संत कै दुखन त्रिगत जौन किरमाय, संतन कै दुखन तृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब को छलै, संत कै दुखन तेज सब जाय, संत कै दुखन नीच नीचाय, संत दुखी का थाओ को नाह, नानक संत भावै ता ओए भी गत पाहे, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक कहो सर्व रोग, संत के निंदक कहो सदा वियोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत भावै ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी कहो दान लागे, संत के दुखी कहो सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख ना सुखते करे, संत के दुखी कहो नाही ठाऊं, नानक संत भावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अज बीच ते टूटे, संत का दुखी किसे काज ना पहुंचे, संत के दुखी कहो उद्यान परमाइये, संत का दुखी उजड़ पाइये, संत का दुखी अंतर के थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किछ नाह, अपन बीज आपे ही खाह, संत के दुखी कहो अवर न राखन हार, नानक संत भावै ता ले उबार, संत का दुखी इयों बिललाए, ज्यों जल विहून मछली चड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईंधन नहीं चरापै, संत का दुखी छुटै इकेला, ज्यों बुआर तिल खेत माहे दुहेला, संत का जोखी धर्म ते रहत संत का जोखी सद मिथिया कैस किर्त निंद का तुर ही पया नानक जो तिस पावे सोई छया संत का जोखी बिगड़ रूप होए जाए संत के जोखी को दरगह मिले सजाए संत का जोखी सदा सहकाई है संत का जोखी ना मरे ना जीवाई है संत के जोखी की पुजै ना आशा संत का जोखी उठ चले निराशा संत के दोख ना त्रिकै कोई जैसा पावे तैसा कोई होए तया किर्त ना मेटे कोई नानक जाने सच्चा सोए सब कर तिसके ओह करना हार सदा सदा तिस को नमस्कार प्रभ की उस्तक करो दिन रात तिसे पियावो सास गिरास सब कछ वरत है किसका पिया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करना हार दूसरे कौन कहे विचार जिसनो कृपा करे किस अपन नाम दे बड़े भागी नानक जन से श्लोक तजो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पहो जाय अष्टपदी मानुख की टेक ऋषि सब जान देवन कहो एक है भगवान जिस कह दिए रह अगाय बहुर ना कृष्णा लागे आय मारे राखे एको आप मानुख कह किछ नाही हाथ किसका हुक्म बूझ सुख होए किसका नाम रख कंठ परोय सिमर सिमर सिमर प्रभ सोय नानक बिघन न लागे कोय उस मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग साध संग बिन सह सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटह पाप जपिय हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उजल मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने इस उत की ओह सोजी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिनै निरंजन जान्या गुर प्रसाद अपन आप सुझै किसकी जानो कृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अंदिन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त मह सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा किसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक किसे न लागे है दुख जिसको हर प्रभ मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत कीजिया गुरु प्रसाद तब सब बूझिया जब देखूं तब सब किस मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल न किस जन्मे न किस मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी सारी सब श्रेष्ठ अपे आप सगल में आप अनेक जुगत राचे थाप उथाप अविनाशी नाही किच खंड तारण चार रहो ब्रह्मांड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उधर है तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपके मेल लये कृपाल गुर का शब्द जप तय निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बड भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान जो किस करे सुप्रभ कह रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए हो वै सो होए करने हार पछाणे सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिससे उपजे इस माहे समाए वे सुख निधान उन्हों बन आए आपस को आप दीनों मान नानक प्रभ जन एको जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਂ ਹੈ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕਿਛ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ ਹੈ ਸਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ ਤਨ ਮੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕਿਸ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਗਰਬੈ ਅਕਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ ਤਿਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੈ ਗਾਵਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ ਯੋ ਮੰਦਿਰ ਕਹੋ ਥਾ ਮੈਂ ਥੰਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ ਜਿਉ ਪਾਖਾਣ ਨਾਵ ਚੜ ਤਰੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੈ ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਤੂਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ ਪੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਅਜਾਨ ਕੌਣ ਬਸਤ ਆਈ ਤੇਰੈ ਸੰਗ ਲਪਟ ਰਹੋ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਬ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹ ਨਾਨਕ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜਿਸ ਬਖਰ ਕਹੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ ਲਾਭ ਖੇਪ ਸੰਤੈ ਸੰਗ ਚਾਲ ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ ਤਨ ਤਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਦਰਗੈ ਸੋਏ ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਤੋਇ ਤੋਇ ਪੀਓ ਅਰਪ ਸਾਧ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਮੁੜਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਅਨਿਕ ਵਿਗੰਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤੈ ਦਰ ਆਇਆ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮ੍ਰਿਤ ਕਹੋ ਜੀਵਾਲਨ ਹਾਰ ਭੁਖੇ ਕਹੋ ਦੇਵਤ ਅਧਾਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ ਪਾਹੇ ਸਭ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਤਿਸ ਦਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਏ ਕਰਨੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤਿਉ ਲੋਇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਇ ਸਚ ਕਰਣੀ ਸਚ ਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ ਸਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ ਸਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸਚ ਕਰ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੁਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਪਦੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ ਮਾਨੁ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਇ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਇ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਅਨਰਾਵ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਯੋਗ ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ ਹਰਨ ਪਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤ੍ਰ ਫੋਰ ਤਿਸਕਾ ਮੰਤ੍ਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕੈ ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰ ਤਾਕੈ ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਯੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਗ੍ਰਸਥ ਮੈਂ ਭੋਗੀ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਤੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੀ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ ਕਿਉ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ਊਚ ਨੀਚ ਕਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करें एक रंग नाना विद किनो विस्तार प्रभ अविनाशी एकंकार नाना चिलित करे खिन माहे पूर रहो पूरन सब ठाए नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सबले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सबल आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उधरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जान घट पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाति बाणी सत पुरख सब माहि समाई सत करण जाति रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए जिसे सब परी सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत वचन साधु उपदेश सत तेजन जाके हृदय प्रवेश सत निरत बुझे जे कोय नाम जपत ताकि गत होय आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी श्रेष्ठ सो करने हार अवर न बूझ कर्त विचार कत्ते की मित ना जाने किया नानक जो तिस पावे सो वर्तिया विस्मन विषम तय विस्माद जिन बुझिया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग रात जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जा कै संग परै संसार जन का सेवक शोभ भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आदि सच युगादि सच है भे सच नानक होसी भे सच अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत देखन हार नाम सत सत प्यावन हार आप सत सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझन हार कहो सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप जिदा जिन मानिया करन करावन तिन मूल पछानिया जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान किस मन प्रगटाया कहते निर्भो होए बसाना जिस ते उपजा किस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गदाई ताको तिन न कहना जाई बुझै बुझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर कहो सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक कहो प्रभ पालन हारा सेवक की रख है निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ तारे नानक सो सेवक सास सास समारे अपने जन का पर्दा टाके अपने सेवक की सर पर राख है अपने दास को देव बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत राख है ताकि गत मित कोई न लाख है प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंच दे ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैजिस प्रगटाया निकी कीनी मह कल राख है भस्म करे लश्कर कोट लाख है जिसका सास न काटत आप ताको राखत देकर हाथ मानस जतन करत बो पांत किसके कर्तव बिरते जात मारे न राख है अवर न कोई सर्व जिया का राखा सोय काहे सोच करें रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडानी बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत एहो मंतन त्रपिया नाम रतन जिन गुरमुख पाया किस किस अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मंतन नामह नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो जस जे भा दिन रात प्रभ अपने जन कीनी दात करें भगत आत्म कह चाय प्रभ अपने स्यों रह समाए। जो हुआ वो वुष्ट हो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। किसकी महिमा कौन बखानो, किसका गुण कह एक ना जानो। आठ पैर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से जन पूरे। मन मेरे तिनकी ओट लिहे, मन तन अपना तिन जन देहे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। किसकी शरण सर्व सुख पावे, किसका दर्श सब पाप मिटावे। अवर स्यानप सगली छाड़, किस जन की तू सेवा लाग। आवन जान ना होगी तेरा, नानक किस जन के पूजो सद पैरा। श्लोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुर किसका नाव। किसकै संग सिख उद्रै, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक कहो गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुर्मत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख बड़पागी है। सतगुर सिख का हल्त पल सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल संवारै। गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस कहो कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद त्यावे। मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास। सेवा करत होए नेकामी, किसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस बिसरे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जान। सो सतगुर जिस हृदय हर नाव, अनेक बार गुर को बल जाओ। सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ परम। सहस स्यानप लया न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़पागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर बचन कर्ण आघाने, मन संतोष आत्म पतियाने। पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्टि पे खै वे संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे किस लय मिलाए। जे बा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल ना पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई। अनिक भगत बंधन नित करहें, चरण कमल हृदय सिमरहें। है सद बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। त्यो हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। मोह माया के संग ना लेप, मन में रखे हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगाशे, नानक परम मोह दुख तैते नासे। तप्त माहि ठांड वरताई, अंध भया दुख नाठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंधेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे। पहु चूका निर्भव होए बसे, सगल व्याध मन ते खै नसे। जिसका सा तिन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी। चित पाई चूके परम गमन, सुन नानक हर हर जस श्रवण। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलातार जिन सगली मोही। अपने चित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोय, सर्व निरंतर एको सोय। ओत पोत रव्या रूप रंग, पै प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनेक बार नानक बलिहारी। श्लोक साधना चाले बिन भजन, विख्या सगली चार। हर हर नाम कमावना, नानक एहो धन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवरो पाव सब मीत विसारो, चरण कमल हृदय में उर्धारो। करण कारण सो प्रभ समरथ, बिर कर बहो नाम हर वथ। एहो धन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस रखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंठ उठ धावे, सो धन हर सेवा ते पावे। जिस सुख कहो नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा कहो करें भली करनी, सा शोभा पज हर की सरनी। अनेक उपावी रोग न जाय, रोग मिटे हर अवखद लाय। सर्व निदान मह हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान। मन प्रबोधो हर कह नाय, जै जिस तावत आवे ठाय। ता कहो बिघन न लागे कोय, जाके हृदय बसै हर सोय। कल ताती ठंडा हर नाव, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। बहु बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाए आत्म प्रगास। चित घर जाए बसै अविनाशी, कहो नानक काटी जम फासी। तस विचार कह जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा। आवा गमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। यों सतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमरित शास्त्र वेद विचारे। हर की भगत करो मन लाय, मन बंछत नानक फल पाए। संग न चालस तेरा तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना। सुत नीत कुटुंब अर बनिता, इनते कहो तुम कवन सनाथा। राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार। अस हस्ती रथ असवारी, झूठा डंप झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझै ना बिगाना, नाम विसार नानक पछताना। गुर की मत तू ले आने, तगत बिना बहु डूबे सियाने। हर की तगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल रखो मन माहे, जन्म जन्म के किरविस जाहे। आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो। सार पूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हमें बिख फैल। ओहे अचिंत बसै सुख नाल, सास गिरास हर नाम संभाल। छाड़ सियानप सगली मना, साध संग पावे सच धना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इया सुख दरगह जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख। एको जप एको सालाह, एक सिमर एको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप। अनिक विस्तार एक ते पहे, एक अराध प्राचित गए। मन तन अंतर एक प्रवराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, परिया तो शरणाय। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए अस्पदी। जाचक जन जाचे प्रभ दान, कर कृपा देवो हर नाम। साधना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख होए, हर रस पावे बिरला कोय। जिन चाख्या से जन तृप्ताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुभर भरे प्रेम रस रंग, उपजय चाओ साध कै संग। परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास आन दिन लिव लाभ। बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रत्ते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुरु ते निर्मल मत लई। जान कहो प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। किस पुनि श्रद्धा सब पूरी, रब रहया सत्संग हजूरी। जिसका सा तिन लिया मिलाए, नानक पलती नाम समाये। सो क्यों बिसरह जे काल न पाने, सो क्यों बिसरह जे किया जाने। सो क्यों बिसरह जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरह जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरह जे अगन में राखे, गुर प्रसाद को बिरला लाख है। सो क्यों बिसरह जे बिखते कड है, जन्म जन्म का टूटा गांड है। गुर पूरै तत एह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो। भगत पाए। तैया संसार बिन भगती तन होसी छार, सर्व कल्याण सुख निध नाम, बुढ़त जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एही सुआओ, नेत्रों पेख दर्श सुख होए, मन विषय साध चरण तोए, भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावे संग, एक बस्त दीजे कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लया। ताती उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व संवाय, प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वत्सल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा कर्त प्रतपाल, आदि पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपे सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमुख हर के गुण गाए, अनिक राज होग बड़े आई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, परी सो करनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ दियो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, अपन किया नानका अपने ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार एहो कछ न दृष्ट चेता, पाप पुन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग समात, जब इसका वर्ण चेन न जापत, तब हरक सोग कहो किसे व्यापत, जब अपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहां किस होवत परम, अपन खेड आप वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत कहो किस को गनी, जब एक है हर अगम अपार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुभाय, तब शिव शक्त कहो किस ठाए, जब आप है आप अपनी जोत धरे, तब कवन निडार कवन कत डरे, अपन चलित आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख अपन आसन, तें जन्म मरण को कहां विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किसे होए, जब अविगात्य अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, अपन आप ही अचरजा, नानक अपन रूप आप ही उपरजा, जय निर्मल पुरख पत होता, जय बिन मैल कहो क्या धोता, जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तय कौन को मान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, जय छल छिद्र लगत कहो कीस, जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे, तय किसे भूख कमन तृप्तावे, कर्ण करावन करने हार, नानक करते का ना है शुमार, जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई, जय सर्व कला आपे परवीन, तै वेद कतेब कहां को चीन, जब अपन आप उर्धार है, तो सगन अपसगन कहां विचार है, जय अपन ऊच अपन आप नेरा, तै कौन ठाकुर कौन कही है चेरा, विस्मन विस्म रहे विस्माद, नानक अपनी गत जानो आप, जय अचाल्य अछेद अपेद समाया, ऊहा किसै व्यापत माया, आपस कहो आप आदेश, क्यों गुण का नाही प्रवेश, जे एक है एक एक भगवंता, तै कौन अचिंत किस लागे चिंता, जै अपन आप पति आरा, तै कौन कथै कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊच दे ऊचा, नानक आपस कहो आपै पहुचा, जै आप रचियो प्रपंच अकार, त्यों गुण मह तीनों विस्तार, पाप पुन तै कही कहावत, को नरक को स्वर्ग बंछावत, आल जाल माया जंजाल, हम मैं मोह परम पै पार, दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बख्यान, अपन खेल आप कर देखे, खेल संकोचै तो नानक एक है। ਜੈ ਅਭਿਗਤ ਭਗਤ ਤੈ ਆਪ ਜੈ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੋਹੂੰ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪਹਿ ਜਨੀ ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂੰ ਬਨੀ ਆਪੇ ਕੌਤੁਕ ਕਰੈ ਅਨੰਦ ਚੋਜ ਆਪੇ ਰਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਯੋਗ ਜਿਸ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਇ ਲਾਵੈ ਜਿਸ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ ਦੇਸ਼ ਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗੰਤ ਅਤੋਲੈ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ। ਸਲੋਕ ਜੀ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ ਅਸਪਦੀ ਆਪ ਕਥੈ ਆਪ ਸੁਨੈ ਹਾਰ ਆਪਹਿ ਏਕ ਆਪ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਆਪਣੇ ਪਾਣੈ ਲਏ ਸਮਾਏ ਤੁਮ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋਏ ਆਪਨ ਸੂਤ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ ਜਾਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸਚ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੇਤਾ ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਾ ਕਹਿ ਹਾਥ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ਜਿਸ ਰੱਖ ਹੈ ਤਿਸ ਕੋਏ ਨ ਮਾਰੈ ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੈ ਤਿਸ ਤਜ ਅਵਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ ਸਭ ਸਿਰ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ ਜੀ ਕੀ ਜੁਗਤ ਜਾ ਕੈ ਸਭ ਹਾਥ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਨੋ ਸਾਥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਦਇਆਲ ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਤਬ ਜਾਣੈ ਆਪ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹੋ ਬਿਆਪ ਤਤ ਪਾਲੈ ਜੀਅਨ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੁਤ ਸਹਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਸ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਭਗਤ ਕਰੈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇਕ ਜਾਣਿਆ ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਏਕੈ ਨਾਏ ਇਸ ਕੀ ਆਸ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ ਸੇਵਕ ਕਹੋ ਸੇਵਾ ਬਣ ਆਈ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ ਇਸ ਤੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਤੈ ਨਿਰਵੈਰ ਅੰਧਨ ਪੂਜੈ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਹਿ ਮੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰੋ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਕਾ ਕਰੋ ਉਧਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਾਣ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਦੇਖੋ ਨੇਰਾ ਮਿਟੈ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਸੈ ਅੰਧੇਰਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵਹੋ ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੋ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਏ ਲਿਹੋ ਸਵਾਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰਧਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਇਸ ਸਾਚ ਪਰੀਖਿਆ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਜਪੋ ਲਿਵਲਾਏ ਦੁਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਪਾਉ ਜਾਏ ਸਚ ਵਾਪਾਰ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀ ਦਰਗਹਿ ਨਿਭੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ ਏਕਾ ਟੇਕ ਰਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵੈ ਜਾਹੇ ਇਸ ਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ ਉਬਰੈ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਇਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰ ਇਸ ਜਨ ਕੋ ਹੋਏ ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰ ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਉਦਰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਕੇ ਅਨੂਪ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਤਾਕੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵਤ ਕਾਲ ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਸਲੋਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਸਤਰੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ਸਗਲ ਸਮਿਗਰੀ ਏਕ ਸਕਟ ਮਾਹੇ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਹੇ ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ ਸੁਨ ਅਸਮਾਦ ਅਨਹ ਤੈ ਨਾਦ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਤਰਨ ਮਾਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੈ ਆਲ ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਬਨ ਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਿਸੇ ਸਮਾਹੇ ਤਿਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਉ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ससियर सूर नक्षत्र मह एक वाणी प्रभ की सबको बोलै आप अडोल न कबहू डोलै सर्व कला कर खेलै खेल मोल न पाइय गुणै अमोल सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत तार रहो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नाश नानक तिन में एहो विश्वास संजना का पेखन सब ब्रह्म संजना के हृदय सब तरम संजना सुने शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने कर्म करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत किस प्रभ के सगली उत्पत किस पावे त करे विस्तार किस पावे त एकंकार अनेक कला लखी न जाय जिस पावे किस लय मिलाय तमन निकट तमन कहिया दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाय नानक किस जन आप बुझाय सर्वभूत आप वरतारा सर्व नैन आप देखन हारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना आमन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सबके मध्य अलिप्तो रह जो किस कहना सो आपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाय नानक जा पावे ता ले समाय इससे होए सो नाही बुरा ओरे कहो किने कछ परा आप पला करतूत अत नीकी आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत अपन संग राच ताकि गतमित कही न जाए दूसर होए ता सोजी पाए किसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक एहो जान जो जाने किस सदा सुख होए आप मिलाए ले प्रभ सोए ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत कराया जन आवन का यह सुहाओ जन के संग चित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक जिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाता नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुण का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्यागो त्रंग संजना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर करो हर तन के भर लियो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुसल सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन अंध करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथी नानक उदरे तिनके साथी शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर तय सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सुख प्रसन्न तय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्व इच्छा की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोय सबसे ऊंच पाए स्थान बौर न होवे आवन जान हर तन खार चलाए जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद्ध नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगाश सब कै माध सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल किस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने त्यो निधान जपै मन कोय सब जुग मह ताकि गत होय गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमृत शास्त्र वेद बखानी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जमते छुटै जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत किस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ दे तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहि समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल काके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुख मनी सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुख मनी।
1: केलबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874।
4: ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੈ ਜਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅੱਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਗੁਨਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਅੰਕੁਲ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਗ ਨਿਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ ਹੈ ਹਵਾ ਹਵਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹਵਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਦੀਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖੇਰਦੈ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤੇ ਧੀਰਜ ਇਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਧੀਰਜ ਏਕ ਜਿਉ ਬਸਦਾ ਕੋਉ ਖੋਦੈ ਕੋਉ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਟਦੈ ਕੋਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕਲਪਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਸੇ ਧਰ ਉਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈਣੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਉਸਤ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ ਖਰਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ ਤੇ ਘੱਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਤਿਉ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੈਰਾਗ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਤਨੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਹਦਾ ਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬਲੇ ਨੇ, ਬੁਲਬਲਾ ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਬੁਲਬਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬਲਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਉਪਜੈ ਬਿਰਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈ ਤੇ ਰਚੀ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੀਤ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬਲਾ ਨੀ ਕੇਵਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਐ ਇਨਸਾਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੂੜ ਹੈ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਾਣ

कैरी साहब चंद जी अपनी ड्यूटी आपसे संभाल दिया करो, सानू असीस जरूर दिया करो। इस तरह शब्द की समाप्ति होंगी है विकारे की बख्शिश, और जिस तरह ही शब्द की शुरुआत कोई कीर्तनिया करता है विकारे की बख्शिश आओ।

के दातार ने असल में रचना लिखी है। कोई भी व्यक्ति इतना खाली न रहे, हम रजन दे सहिता दे बालक बिना गति 400 साल मना रहे हैं। मेरी सारे ने करना इतना जोर देती है कि तुम परमात्मा ने रचना लिखी है। एक बार सारे ही एक पंक्तियां गायन करिए, पता लगे के सारे ही सारे प्यार नुरे चरणा जोड़ी बेनती कर रहे हैं। रचना जी की मकुश में पुष्ट है कि जिसको नहीं है वही रचता है। ये रचना लिखी है मेरिया माता बहना नौजवान जितने भी बैठे हैं सारे के चरणा बेनती है। एक बार बड़े प्यार इन्होंने पंक्तियां गायन करिए। उस समाज जरूर गायन करिए।

परिचन तोरी ना टूट है सोरी ना छूट है ऐसी माधु नीच कमी है मेरे वाहगुरु ने ऐसी प्यार वाली कमी डोरी खींची है हम प्यार कभी तोड़िया टुट नहीं सकता छतिया छूट नहीं सकता तोरी ना टूट है सोरी ना छूट है ऐसी माधु नीच कमी वाहगुरु की बेनती है जिनस रहन मन माही दस्त है तू कर कृपा करवा आओ जो न करिए सतगुरु जी का।

0: सूरत वालिया।
1: जिथे भरपूर ममता का समर्थन करने वाले, जिथे किसी दियां पूर्ण भावनावां समझण वाले, उत्थे पूर्ण रूप विच त्याग दी इक झलक कह के आप तो खिमां दे जा चुकवांगे। एक दिन खेडदिआं खेडदिआं एक कंगन सोने का ला के गंगा दे विच सुट दिता है। जदों घर आए ने माता जी ने पुछिआ, पुत्तर एक कंगन किथे है? ते कहण लगे, माता जी आओ तुहानूं दसदे आं। माता जी नूं बाहों फड़ के नाल लै गए माता गुजर कौर नूं। जिथे पहला कंगन सुटिया सी उत्थे दूजा ला के हथ विचों सुट दिता। माता कहण लगी, पुत्तर सोने दे कंगन सन। कहण लगे, माता इस जिंदगी विच अजे बड़ा कुछ त्याग करन वाला है, हाली तां सिर्फ इह इक त्याग दी छोटी जी कड़ी है, आओ जरा तकन दा जतन करो।
0: कर दे चोजन यारे सतगुरु एक दिन आग घर तो बार खेड नाल हानिया पातशाह।
2: नाल हानिया पातशाह चोज करते बेशुमार, फिरदे गंगा ते पहुंच गए।
0: फिरदे गंगा ते पहुंच गए, गंगा रही छल्ला मार लाके सज्जे हाथ चो कंगड़ा।
2: सज्जे हाथ चो कंगड़ा सुटिया गंगा दे विच कार आ गए, कर इस तरह परत के
0: आ गए, कर इस तरह परत के कर दे खुशियां लख हजार। खाली हाथ माता ने वेखिया,
2: खाली हाथ माता ने तकिया, बाजू साहब रहे उलार दिसदा कंगना नहीं ओ लाल जी।
0: ओ दिसदा कंगना नहीं ओ लाल जी, मां ने पुछिया नाल प्यार किथे सुट गवाया कंगना।
2: किथे सुट गवाया कंगना, हो किथे सुट गवाया कंगना, खेती दसो हाल पुकार फड़के हाथ माता दा पातशाह।
0: फड़के हाथ माता दा पातशाह, ले आगे बार बार चल के गंगा कंडे पहुंच गए।
2: चल के गंगा कंडे पहुंच गए, नन्ने बोल न कहा उचार लाके दूजे हाथ चो कंगड़ा।
0: बुला के दूजे हाथ चो कंगड़ा, दिता गंगा रे विच तार, पहला माता पहला भी इथे सुटिया,
2: पहला भी इथे सुटिया, ना कर दे इनकार कंगड़े सोने देना पहनने।
0: कंगड़े सोने देना पहनने, सर बोलो दे करूं तैयार, पीनू सारा जगी।